0: आज का वर्ड ऑफ द डे है पूजा, जो अगर आपकी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं है लेकिन आप इस इंसान को टेक्स्ट करते हुए पाए गए या उसे फोन करते हुए पाए गए बाय योर गर्लफ्रेंड, जिसका नाम कनिका, रिद्धि, सिद्धि कुछ भी हो सकता है लेकिन पूजा नहीं, तो आपको ऐसी बीटी मिलने वाली है कि उसके बाद आपको मेरी डेफो जरूरत पड़ेगी। एंड माय सजेशन टू यू इज, अगर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, अपनी आंखें, दिमाग और दिल इधर उधर ना भटकाएं तो आपकी सेहत के लिए ज्यादा अच्छा है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं, व्हाई डोंट यू हिट मी अप, आई विल क्योर यू ऑफ योर इनफिडेलिटी प्रॉब्लम्स। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, सो गो अहेड डार्लिंग, डू व्हाट यू हैव टू डू, इवन दो मेरा नाम पूजा नहीं है, हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB, एंड व्हाइल यू डू दैट कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।
1: Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

Mirchi. It's hot.

जिसके भी बस की हो आके पकड़ ले, इनसे गेम क्रैक की नहीं हो रहा ना, हिट कोई ट्रैक की नहीं हो रहा ना, यहाँ फिर मैंने सीन चेंज किया और कुछ लोगों का कम बैक की नहीं हो रहा। बादशाह है नाम मेरी जान, प्यार से मुझको वो पैडी बोलती है, गेम में लॉन्डो का बापू बेबी, एक तू ही थोड़ी है जो मुझे डैडी बोलती है।

0: गुड बॉय बन जाता हूँ।
1: yeah.
0: उड़ती है खबरें लेता ना स्ट्रेस।
1: no.
0: गेम का काट ऑन टू द नेक्स्ट।
1: हो
0: पेन है प्राइवेट लाइफ है ब्लेस। मुट्ठी में गेम मेरे घंटे पे प्रेस। बैड बॉय शाह कैसे तुझे तेरे बस का लगा ना मुझे ऐसे मस का लगा। रही ना किसी काम धाम की जब से लड़की को चस्का लगा।

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप। अब बारी है हफ्ते के हॉटेस्ट पॉप काउंटडाउन की। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। हफ्ते के टॉप 10 गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक है ऑल दिस एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की। गाना नंबर 10 पर एक नई एंट्री है, गाने का नाम है छोरी। मिक्का सिंह एंड दया द रैपर का है गाना। उसके बाद मिट्टा रॉर का शीशा पिछले हफ्ते से 4 पोजिशन नीचे ड्रॉप हुआ है। मिट्टा रॉर की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, मिट्टा रॉर एंड स्वरा वर्मा की आवाज में शीशा इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। Enjoy. Number 10.

0: स्वरा वर्मा मिटर और की आवाज, मिटर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, गाने का नाम है शीशा। दिस वीक ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: मिर्ची पर दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका एंड दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। @RJ कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, कोई गाना सजेस्ट करना हो, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। गाना नंबर 9 पर हमने जो गाना सुना मिट्टा रोर की आवाज में शीशा, पता है वो 2 साल पहले रिलीज हुआ था। बिना किसी एक्सपेक्टेशन के मिट्टा ने गाना अपलोड कर दिया एंड धीरे धीरे खुद अपने आप सोशल मीडिया रील्स बनाए उस पे, गाने के बारे में कॉन्वर्जेशन करते रहे एंड 6 महीने बाद वो गाना ब्लो अप हो गया। उसके बाद कंसिस्टेंटली लोग उस गाने के साथ जुड़ते रहे, सो मच सो दैट कि 2 साल बाद इस गाने की म्यूजिक वीडियो बनी, ये रिलीज हुई एंड नए लोगों को इतना पसंद आया दैट हमारे चार्ट्स में पिछले 7 हफ्तों से ये गाना है। यही टेस्टिमनी होती है किसी गाने की कि आप कभी भी कहीं से भी सुने आप पहचान जाए उस गाने को। पिछले हफ्ते हमने आपको एक गाने का एक इंट्रो म्यूजिक सुनाया था, आपको गेस करना था ये कौन सा गाना है। लिसन टू इट वंस अगेन। Lots and lots of right answers, but some wrong answers as well. The correct answer is Waaste by Dhwani Bhanushali and Nikhil D'Souza, साल 2019 का ये गाना। आज भी इतना प्यार है इस गाने के लिए लोगों के दिल में। कुछ लोगों ने तो बिल्कुल ही गलत गेस किया, पहला नशा तो ये दूर दूर तक साउंड नहीं करता है, बट आई हैव गॉटन सो मेनी रिस्पॉन्सेस सेइंग पहला नशा, एक कुड़ी। जिन्होंने भी गलत आंसर किया है, टाइम टू रिडीम योर सेल्फ, इंडी पॉप को इसकी बारी है। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, मैं बादशाह का एक गाना आपके लिए प्ले करने वाली हूँ। एक इंस्ट्रूमेंटल पीस है, म्यूजिक सुन के बताना है गाने का नाम क्या है। लिसन टू इट वेरी केयरफुली। @RJ कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम पर आके बताओ ये म्यूजिक कौन से गाने में है। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी। गुरु रंधावा का गाना, गाने का नाम है वोग। पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।
1: नंबर 8।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट

0: दिलजीत दोसांझ की आवाज, उनकी कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है डीलर। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले हमने सुना कोक स्टूडियो भारत का गाना, गाने का नाम है ए अजनबी, आदित्य रिखारी रावट और कुटले खां की आवाज में। ए अजनबी 4 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello, hello, स्वागत है आपका। दिस इज गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनेका। अभी के अभी जाओ @RJ कनेका ऑन इंस्टाग्राम पर, मुझे फॉलो करो। कोई गाना सजेस्ट करना है, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। इफ यू थिंक अबाउट द इंडी पॉप स्टार्स फ्रॉम 2000s and 2010, द पंजाबी पॉप स्टार्स जैसे दिलजीत दोसांझ हो गए, उन्हें हमने उनके बड़े गानों के थ्रू डिस्कवर किया। बेसिकली जब म्यूजिक लेबल्स ने उन्हें डिस्कवर किया, तब हमने उनके गानों को डिस्कवर किया। बट इफ आई हैव टू टॉक अबाउट द लास्ट 4-5 years, कंटेंट डिस्कवरी का सबसे बड़ा इंजन बनता जा रहा है, एंड म्यूजिशियंस आर्टिस्ट इस कंटेंट गेम में बेटर होते जा रहे हैं विद एवरी डे। एंड द न्यू वेव ऑफ पॉप स्टार्स आर दोस जो सोशल मीडिया के जरिए अपना कनेक्शन बढ़ाते हैं, लेकिन अपनी ऑनेस्टी और सॉन्ग राइटिंग के थ्रू अपना म्यूजिक कनेक्शन बढ़ाते हैं। वन ऑफ सच आर्टिस्ट व्हिच आई फील इज डूइंग सो वेल एंड विल कंटिन्यू टू डू वेल इज कॉल्ड जीनी। देहरादून की एक यंग सिंगर सॉन्ग राइटर, लेट नाइट अपलोड, बहुत ऑनेस्ट सॉन्ग राइटिंग, वो अपने फैंस के साथ ऑर्गेनिकली ग्रो हुई है। इफ यू लुक एट हर सोशल मीडिया, यू विल सी दैट जो लोग उन्हें फॉलो करते हैं वो बहुत इन्वेस्टेड रहते हैं। दैट जीनी ने इस गाने को जब लिखा तो उसके पीछे व्हाट वाज शी गोइंग थ्रू, इट्स लाइक वो डायरी एंट्री करती हैं एंड हर फैंस आर इन्वॉल्वड इन इट। उनका एक गाना है कॉल्ड नादानिया, व्हिच इज अबाउट लॉस, ग्रीफ एंड एक्सेप्टेंस ऑफ दैट लॉस। जब वो उस गाने को प्रमोट कर रही थी, शी वेंट अहेड एंड शी शेयर्ड विद हर ऑडियंस दैट अगर आपने कभी कोई लॉस फेस किया है एंड आप अभी तक उसे ओवरकम नहीं कर पाए हो, शेयर योर स्टोरीज विद मी। एंड सो मेनी फैंस पोर्ड देयर हार्ट्स, उनके कॉमेंट्स में अपनी बहुत पर्सनल स्टोरीज उन्होंने उनके साथ शेयर करी। दैट्स वॉट रियल कनेक्शन इज। वो हमेशा ऐसे छाती फाड़ के, ड्रम्स बजा के, सुपर स्टार की तरह नहीं होता है, वो बहुत ऑर्गेनिक एंड ऑनेस्ट होता है। उनके इंटरव्यूज में, उनके गाने में एक चीज बार बार रिपीट होती है, दैट शी वांट्स अ म्यूजिक टू नॉट साउंड परफेक्ट बट वेरी ह्यूमन, एंड ह्यूमंस आर फ्लॉड। दैट्स व्हाट मेक्स हर सो रिलेटेबल, कि जैसी वो ऑनलाइन है अपने गानों में भी वैसी ही है। शी इज हैविंग अ फैंटास्टिक रन, क्लब हाउस रूम से उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत करी, सेल्फ प्रोड्यूस्ड डेमोज, सोशल मीडिया में दोज लेट नाइट फ्रेगमेंट्स, धीरे धीरे सोल्ड आउट शोज, एंड शी हेडलाइन वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूजिक फेस्टिवल लॉलापालूज़ा अर्ली दिस ईयर। नाम याद रखो, नाम है जीनी। रेडियो सेट की वॉल्यूम बढ़ाओ, आई एम गोना प्ले हर सॉन्ग कॉल्ड फीका फीका व्हिच फीचर्स चार दिवारी इन द म्यूजिक वीडियो। जीनी एट हर बेस्ट, दिस इज फीका फीका प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।

0: Man oh man, word by word, it feels that she is really feeling her song. Jeannie ki awaaz unki composition, gaane ka naam hai Fika. Ye gaane sunte hi lagta hai that Jeannie is not just another independent artist. She's one of those artists of this generation that wants to grow with the new audience. At RJ Kanik on Instagram par aao, koi aise naye independent artist hain jo aapne discover kare hain, humse aage share karo and we might feature them and their songs next week. Now back to the countdown, agle wale gaane की बारी. दिलजीत दोसांझ एंड सिया का गाना, गाने का नाम है रांझा, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 5.

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
1: सुन रहे हैं आप. दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाए, मेरा हैंडल इज @RJKanika. कोई गाना शेयर करना है, कोई बातें बतानी है, बिंदास आके हिट मी अप. आई ट्रूली बिलीव दैट गाने शेयर करने से प्यार बढ़ता है. आज हम इंडिपेंडेंट पॉप म्यूजिक के बारे में जब बात करते हैं, पॉप स्टार्स के बारे में बात करते हैं, ऑल ऑफ देम हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड एंड इंस्पायर्ड बाय 90s एंड 2000s का इंडी पॉप. हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में सबसे बड़ा जायंट था हिंदी फिल्म्स. आर्टिस्ट के लिए सक्सेस होती थी कि एक बड़ी फिल्म में मेरा गाना आ जाए, और फिल्मों के साथ साथ इंडिपेंडेंट नॉन फिल्म स्पेस में जिस तरीके से इंडिपेंडेंट पॉप म्यूजिशियंस लाइक शान, मोहित चौहान, लकी अली ने वो स्पेस क्रिएट किया, उसका इम्पैक्ट हमें आज भी दिखता है. नीडलेस टू से दैट इंडी पॉप एरा वॉज द गोल्डन एरा ऑफ पॉप म्यूजिक. इसीलिए इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहां पर हम 90s 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं. द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वाज कब ये मानेगी, एंड द सॉन्ग वी आर गोइंग टू फीचर दिस वीक इज गाने का नाम है सोचता हूँ उसका दिल बाय बाबुल सुप्रियो. हैंड्स डाउन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल रोमांटिक पॉप सॉन्ग ऑफ ऑल टाइम. ऑफ कोर्स उस एरा में सिंप्लिसिटी वाज कोर ऑफ ऑल द रोमांटिक सॉन्ग्स, पर इस गाने में कुछ और ही है यार, कुछ है वो बात. कोई ज्यादा क्लेवर लाइंस नहीं है ना ड्रामा है, बहुत सिंपल सीधा प्यार का इमोशन है. आई थिंक द हीरो इंग्रेडिएंट हियर इज इनोसेंस. प्यार की डेफिनेशन को या उसके मतलब को ढूंढने में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं करिए. द सॉन्ग एक्चुअली इज ऑल अबाउट अ क्वेश्चन. कन्फ्यूजन है, हेजिटेशन है, थोड़ी सी ऑकवर्डनेस भी है, एंड टीनेज लव वॉज ऑल अबाउट ऑकवर्डनेस. आई रिमेंबर मैं जब इस गाने की म्यूजिक वीडियो को देखती थी बैक इन द डे, आई यूज टू टोटली इमेजिन माई सेल्फ एज दैट सेंट्रल कैरेक्टर जिसके लिए ये हीरो ये गाना गा रहा है. एंड आई स्वेयर आई एम नॉट इवन लाइंग, आज भी इस गाने को सुन के मेरे को वो बटरफ्लाइज आती हैं. समथिंग इन द वॉइस ऑफ बाबुल सुप्रियो, एक वो वॉर्म्थ है, एक फेमिलियरिटी है, ऐसा लगता है बस मेरे लिए ही बना ये गाना. हमने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. आई एम गोइंग टू राइड ऑन द डेलुलु एक्सप्रेस बाबुल सुप्रियो की आवाज में. दिस इज सोचता हूँ उसका दिल ऑन आ कैसेट क्लासिक दिस वीक. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है RJ कनिका. एंजॉय.

I will exactly tell you how this song makes me feel. आप कभी फेरिस व्हील पे बैठे हैं, वो मेले वाला गोल वाला झूला, जब वो झूला ऊपर से नीचे आता है तो पेट में एक अजीब सी गुदगुदी होती है ना, that's what this song sounds like to me. बाबुल सुप्रियो की आवाज में, that was सोचता हूँ उसका दिल on a cassette classic this week. Ultimate love bender है ये गाना. At RJ Kanik on Instagram पर आओ, हमारे साथ 90s and 2000s के ऐसे गाने शेयर करो which you think still hits home. My sound producer अश्का और मैं बहुत बड़े फैन हैं आपके और आपके रिकमेंडेशंस के, एंड यू हेल्प्ड अस मेक दिस सेगमेंट इनटू सच अ सक्सेस. सो कोई भी रिकमेंडेशंस हो बिंदास आके हिट मी अप. नाउ बैक टू द काउंटडाउन, आगे बढ़ते हैं. संजू राठौड़ का गाना बैंगल्स पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक इज ऑन गाना नंबर 4. उसके बाद अनूप जैन की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग, गाने का नाम है अर्ज किया है. 16 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार अर्ज किया है इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 3.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची

0: का नाम है बैरन बाय द वन एंड ओनली बंजारे. उन्हीं की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन. बंजारे इज अ म्यूजिकल एक्ट. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके बैरन इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ.
0: हेलो स्वागत है आपको ऑन द शो विच इज कॉल्ड गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनका. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो. मेरा हैंडल इज @RJKanaka. गाना नंबर 10 से गाना नंबर 2 का सफर हम पूरा कर चुके हैं. नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक, इट्स टाइम फॉर अ क्विक रीकैप राइट फ्रॉम द टॉप. मिका सिंह दैया द रैपर का छोरी अनन्या नवेला डेब्यू ऑन गाना नंबर 10. Then गाना नंबर 9 पर मिट्टर और का शीशा.
2: तेरी आंखें पिछलों के सुन दो ना छोरी का हर.
0: गुरु रंधावा का वोग दिस वीक ऑन गाना नंबर 8. गाना नंबर 7 पर इस आदित्य रिखारी रैवट और कुटले खां का ए अजनबी फ्रॉम कोक स्टूडियो भारत. उसके बाद गाना नंबर 6 पर दिलजीत दोसांझ का डीलर. डबल वैमी बाय दिलजीत दोसांझ अलोंग विद सिया रांझा ऑन गाना नंबर 5. संजू राठौर का बैंगल्स दिस वीक ऑन गाना नंबर 4. देन अनूप जैन का अर्ज किया है ऑन गाना नंबर 3.
3: कायर जो थे वो शायर बने, अब क्या क्या करें ये इश्क में.
0: बंजारे का बैरन ऑन गाना नंबर 2.
4: मुन्ने सांब सांब रखे तेरे झंझरा के जोड़े मेरी गेर.
0: बैरन पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप हुआ है. इसका मतलब वी हैव गॉट अ न्यू सॉन्ग ऑन द टॉप. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप करके करण औजला एकी का गाना गाने का नाम है बॉयफ्रेंड फिर से क्लाइम करके बन गया है गाना नंबर 1. 24 हफ्तों से ये गाना इस काउंटडाउन पर बरकरार है. बॉयफ्रेंड इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 1. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: Mirchi, it's hot. Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: Entertainment बहुत हो रहा है आजकल. कंटेंट भी, रील्स भी, सॉन्ग्स भी, शोज भी, हर फ्राइडे कुछ ना कुछ आ ही रहा है. लेकिन ऑनेस्टली याद रहने वाली चीजें बहुत कम बन रही हैं, और शायद इसलिए इस वक्त बॉलीवुड का मूड इंटरेस्टिंग लग रहा है. एक तरफ धुरंधर जैसी फिल्म है, इसके गाने सिर्फ चल नहीं रहे, कल्चर को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, एंड दूसरी तरफ 90s और 2000s की मेमोरीज फिर से कम बैक कर रही है. पुराने साउंड सडनली कूल लगने लगे हैं, नए आर्टिस्ट ओवरनाइट स्टार्स बन गए हैं, एंड ऑडियंस सिर्फ नॉइज नहीं, फीलिंग ढूंढ रही है, कनेक्शन ढूंढ रही है. बिकॉज इवेंचुअली एल्गोरिथम सिर्फ अटेंशन खरीद सकते हैं, इमोशन नहीं. और इसी इमोशन के साथ मुंबई से लेकर दुबई तक, कानपुर से दिल्ली तक, दिस इज द मिर्ची टॉप 20, एंड मैं हूं इस शो का होस्ट सुरेन सुंदरम. लेट्स बिगिन. फर्स्ट अप, गाना नंबर 20. देखो, शुरुआत में कहा था ना मैंने, एंटरटेनमेंट वैसे बहुत हो रहा है, लेकिन याद रखने वाली चीजें कम है. This is Dil Wale Chor by Aditya Rikhari and Shreya Ghoshal that features in Pati, Patni aur Wo Do. Sun lo bhai, yaad reh gaya to achhi baat hai. Number 20.

एतबार कुछ गाने अजीब होते हैं, खत्म हो जाते हैं लेकिन उनका मूड थोड़ी देर और साथ चलता है। इट्स मी सुरेन, एंड शायद इसलिए इस हफ्ते जब मैं एक ओथ सेरेमनी देख रहा था तो मेरे दिमाग में बार बार एक फिल्म चल रही थी, नायक अनिल कपूर एक दिन के चीफ मिनिस्टर। और जब हमने वो फिल्म देखी थी, इट फेल्ट वाइल्ड, इट फेल्ट एक्साइटिंग, इट फेल्ट इमोशनल। लेकिन एक चीज क्लियर थी यार, ये सिर्फ फिल्मों में होता है। बिकॉज लेट्स गेट रियल, कौन सा सुपरस्टार अपनी पीक पे पॉलिटिक्स में जंप करता है? बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने ट्राई किया था, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, कमल हसन, लेकिन इस बार फीलिंग थोड़ी अलग थी। शायद इसलिए क्योंकि विजय अभी भी फुल सुपरस्टार मोड में है। He's got young energy, massive fan following, और लोगों के साथ वो इमोशनल कनेक्शन जो सिर्फ स्टार्स के पास होता है। और ओथ सेरेमनी देखते वक्त एक सेकंड के लिए जेन्युइनली लगा, कभी कभी सिनेमा सिर्फ एस्केपिज्म नहीं होता, कभी कभी वो रियलिटी के बहुत नजदीक आ जाता है। और उस मोमेंट में नायक थोड़ी कम फिक्शनल लगी। Look, I don't know if Vijay's real life role as a chief minister नायक की तरह होगी, but man, it felt good. खैर, अब एक ऐसी आवाज जो पहली बार सुनते ही अटेंशन खींच लेती है। From मैं वापस आऊंगा, this is Mascara, sung by Nilanjana Ghosh Tastidar, जो दुनिया भर में AR रहमान के साथ बेस गिटार प्ले कर चुकी हैं। एंड सच कहूं तो सिर्फ रहमान साहब ही हैं जो किसी म्यूजिशियन में से एक ऐसी हॉन्टिंग आवाज डिस्कवर कर सकते हैं। थोड़ा सा कतिया करूं वाला मूड है, थोड़ा सा मिस्ट्री है। दिस इज मस्कारा, डेब्यूइंग दिस वीक एट नंबर 18 फ्रॉम मैं वापस आऊंगा। नंबर 18।

0: तेरा हो जाऊं, अ टिपिकली सचिन जिगर सॉन्ग विद जुनीता गांधी एंड स्टेबिन बेन। एंड अरिजीत के रिटायरमेंट के बाद थैंक गॉड न्यू वॉइसेस आर इमर्जिंग, वरना हर हीरो की एक ही आवाज हुआ करती थी। वैसे भी बॉलीवुड में हीरो बनना शायद इजी है, लेकिन हीरो बने रहना, नाउ दैट इज द रियल गेम, स्पेशली आज के वक्त में जहां फ्राइडे मॉर्निंग से ज्यादा ब्रूटल फ्राइडे इवनिंग का सोशल मीडिया होता है। और हाल ही में वरुण धवन की एक बात मुझे याद आ गई, उस बात में एक सरप्राइजिंग सच्चाई थी, क्योंकि फॉर अ फ्यू सेकंड्स वरुण के अंदर का एक्टर नहीं, वरुण की इनसिक्योरिटी बोल रही थी।
1: मुझे एक्चुअली बिल्कुल टेंशन नहीं थी पहली फिल्म में। द मोस्ट स्ट्रेस आई फेल्ट वाज व्हेन मैं तेरा हीरो वाज रिलीज। मैं तेरा हीरो बिकॉज आई फेल्ट कि दिस वाज अ फिल्म, स्टूडेंट वाज अ फिल्म विद थ्री एक्टर्स। चलो यू नो ऑल द अदर एक्टर्स हैव गॉट वर्क आफ्टर दैट एज वेल, आई हैव नॉट। नाउ आई एम डूइंग दिस फिल्म विच इज अ कंप्लीट कॉमेडी फिल्म, न्यू एक्टर्स, ये जोन या ये सुर नहीं छेड़ रहे आज के टाइम में। अभी मैं ये कैसे ऑडियंस को बोलूं कि यार मैं सच्ची में हीरो हूं, मुझे सीरियसली लो, मैं कॉमेडी करना चाहता हूं, एक्शन करना चाहता हूं, रोमांस करना चाहता हूं, मैं सब कुछ करूंगा ऑडियंस के लिए, जस्ट गिव मी अ चांस। एंड लिटरली आई क्लॉड एंड फॉट एंड क्राइड एंड डन एवरीथिंग पॉसिबल इन दैट फिल्म। मुझे लगता है भगवान ने भी मुझे बहुत टेस्ट किया, लिटरली मेरा करियर बहुत, इफ मैं तेरा हीरो डिडंट वर्क एज अ सोलो हीरो फिल्म फॉर मी, आई वुड नॉट बी सिटिंग हियर टुडे।
0: और ये अमेजिंग है क्योंकि बाहर से स्टारडम बहुत ग्लॉसी दिखती है, लॉन्चेस, हिट्स, फेम, फैन फॉलोइंग, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक डर सबको होता है, व्हाट इफ द ऑडियंस स्टॉप्स चूजिंग मी, व्हाट इफ दे स्टॉप लविंग मी। शायद इसलिए वरुण की बोली ये बात कनेक्ट करती है, बिकॉज फॉर वन मोमेंट वरुण धवन स्टार नहीं लगे, बस एक एक्टर लगे जो सर्वाइव करना चाहते हैं। और अब एक गाना जो ऑफिशियली सैयारा गैंग का हिस्सा बन गया है, वही लॉन्गिंग, वही सॉफ्ट हार्ट ब्रेक, वही लेट नाइट फीलिंग, फ्रॉम चांद मेरा दिल, दिस इज द टाइटल ट्रैक, चांद मेरा दिल बाय फहीम अब्दुल्ला ऑन नंबर 13।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 10

वही दिल लगाया। और कभी कभी ना एक गाना हिट होने से पहले ही लोगों का बन चुका होता है, इंटरनेट पे रील्स में, रैंडम लेट नाइट स्क्रोल्स में। और कुछ महीने पहले ऐसी ही दो आवाजें अचानक हर जगह सुनाई देने लगी थी, कृष मंडल एंड किशोर मंडल, दो भाई, नो बिग सेटअप, नो इंडस्ट्री लॉन्च, बस टैलेंट और एक अजीब सी ऑनेस्टी। और मैं खुद इन दोनों को सोशल मीडिया पे फॉलो करता हूँ एंड इनका एक कवर तो अलग ही लेवल पे चला गया था।

See, that's the thing. Perfect नहीं है, polish भी नहीं है, लेकिन इस गाने में वो feel है, और शायद इसलिए लोग इनसे connect कर गए. And फिर Bollywood enter हुआ. Song को scale मिल गया, stars आ गए, gloss आ गया, बादशाह आ गए. And suddenly जिन दो लड़कों की वजह से ये गाना चला, वो अपने ही गाने में background में खड़े नजर आए, like extras. And that felt strange. और थोड़ा सा दुख भी हुआ. नॉट बिकॉज सक्सेस गलत है, ऑफ कोर्स नहीं है यार, लेकिन कभी कभी इंडस्ट्री टैलेंट को एलिवेट करती है और कभी कभी उसे डेकोरेट कर देती है. इंटरनेट ने उन्हें स्टार्स बनाया था, बॉलीवुड ने उन्हें एस्थेटिक बना दिया है. लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बिकॉज रियल कनेक्शन इवेंचुअली अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है. और अब एक और शादी के बाद के चक्करों वाला गाना, नंबर 9 पे, फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है. दिस इज व्याह करवा दो जी, यू आर ऑन द मिर्ची टॉप 20.

Duhi Dasda has climbed to number 2 and now suddenly the conversation gets much, much bigger. It's me, Suren, and today I want to tell you something about a book. It's about 2010, Amish Tripathi, and his written book, The Immortals of Melhua, Shiva Trilogy, its first part. और जब मैंने ये किताब पहली बार उठाई तो मैं बहुत बहुत अंदर चला गया और सच कह रहा हूं बाहर ही नहीं निकल पाया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक पूरी दुनिया थी, एक सिविलाइजेशन, एक कॉन्फ्लिक्ट और एक इंसान जो भगवान बन जाता है। और जब आप इस किताब को पढ़ते हैं आप सिर्फ शब्द नहीं पढ़ते, आप देखते हैं, आप सुनते हैं, आप महसूस करते हैं, आप वहां मौजूद होते हैं। और फिर करण जौहर ने इस किताब के राइट्स खरीद लिए। सालों तक कुछ नहीं हुआ, नो फिल्म, नो अपडेट, नो नथिंग। और फिर 2024 में अमीश त्रिपाठी ने कंफर्म किया राइट्स वापस आ गए हैं। मैं हैरान नहीं हुआ क्योंकि ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा था, इतना कॉम्प्लेक्स था, इतनी रिलीजियस सेंसिटिविटी थी कि अगर आपकी विजन और आपकी एग्जीक्यूशन में एक भी चूक होती ना तो दुनिया आपको माफ नहीं करती। एंड अब खबर है, एंड इट्स नॉट कंफर्म येट, कि रणवीर सिंह दुरंदर की कामयाबी के बाद इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने वाले हैं। और मैं जानता हूं कि आप क्या पूछना चाहते हैं, क्या रणवीर सिंह ये रोल कर सकते हैं, क्या बॉलीवुड इस फिल्म को जस्टिस दे सकता है। लेकिन ये सवाल ही गलत है यार। असली सवाल ये है कि क्या कोई भी फिल्म, कोई भी डायरेक्टर, कोई भी बजट कभी वो दुनिया बना सकता है जो आपने अपने दिमाग में बनाई थी जब आपने वो किताब पहली बार पढ़ी थी। शिवा ट्रिलॉजी द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ डिजर्व टू बी मेड, लेकिन सिर्फ तब जब कोई फिल्म मेकर इतना ब्रेव हो कि वो अपनी विजन को हजारों लोगों की इमेजिनेशन से ऊपर रख सके। अभी तक वो बंदा आया नहीं था लेकिन शायद अब आ चुका है। इस हफ्ते नंबर 1 पे वो गाना है, वो फिल्म है जिसके बारे में भी हमने कुछ ऐसा ही कहा था, यार धुरंधर इतनी बड़ी हो जाएगी 13 हफ्तों के बाद, वो लोग कहाँ हैं, धुरंधर कहाँ है और शरारत कहाँ है, आप वो खुद देख लो। नंबर 1 आदित्य धर, धुरंधर, शरारत, 13वां हफ्ता। नंबर 1

0: शरारत 13 हफ्ते और नंबर 1। एंड सच ये है कि इस गाने की जर्नी देखकर एक बात समझ आ जाती है कि हिट्स आते रहेंगे, लेकिन कभी कभी एक गाना सिर्फ चार्ट बस्टर नहीं बनता, वो पूरे वक्त का साउंड ट्रैक बन जाता है, और शायद शरारत वही गाना है। किसी के साथ ये था इस बार का मिर्ची टॉप 20। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, दिस इज सरेन ओवर एंड आउट।
1: के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

0: Mitchie. It's hot.
1: साथी रे थोड़ा ठहर जा।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट मिर्ची।

0: की गल करनी है?
1: तेरे मेरे बारे
0: की?
1: बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
0: बचपन दी बात होर सी।
1: 10 साल हो गए।
0: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन ते गल करती हूँ।
1: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

0: Mirchi, it's hot.
1: Good morning, guys. This is your girl Priscilla on Mirchi Mornings, जहाँ पर caffeine हो सकती है कम लेकिन drama होगा full on. और देखो भाई, Indians in America are built differently. Mom जो है वो कहती है बेटा jacket पहनकर बाहर जाना, और uncle लोग shorts पहनकर Costco जा रहे होते हैं, like they are roaming on a Goa beach. देखो आज के time मेरा सुबह सुबह office जाना भी खतरे से खाली नहीं है. सुबह सुबह 8:01 पर boss का email आता है कहते हुए gentle reminder. यार मुझे तो ना इसमें पैसिव अग्रेशन दिखाई देता है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? तो मुझे फटाफट से फॉलो भी कर लो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. और व्हाट्सएप पर जल्दी से भेजो अपने मैसेजेस 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244. लेकिन लाइफ में फिलहाल जो कुछ भी चल रहा है उसे चलने दो, क्योंकि चल रहा है मिर्ची मॉर्निंग्स अगले कुछ घंटों के लिए मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ में. क्योंकि कहते हैं ना, सुबह की शुरुआत अगर अच्छी हो तो पूरा दिन बन जाता है. फिलहाल बैक टू बैक मिर्चीदार बैंगर्स तुम्हारे लिए प्ले करती हूँ. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

गुड मॉर्निंग क्यूटीज, मैं हूँ प्रिसुला, तुम्हारे साथ में ये है मिर्ची मॉर्निंग्स और फ्रेश कप ऑफ चाय गॉसिप के साथ थोड़ी सी हिस्ट्री लेकर आई हूँ। सो लेट्स रिवाइंड। सबसे पहले चलते हैं 1498 में पोर्टुगीज एक्सप्लोरर वास्को

फिर 1873 में लीवाई स्ट्रॉस एंड जेकब डेविस पेटेंटेड ब्लू जीन्स विद कॉपर रिवेट्स। 1875 में 17 कंट्रीज साइंड द मेट्रिक कन्वेंशन इन पेरिस। दिस हेल्प्ड स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट्स वर्ल्ड वाइड एंड टुडे आल्सो रिमाइंड्स अस ऑफ हिस्ट्रीज डार्केस्ट चैप्टर। इन 1940 द फर्स्ट प्रिजनर्स अराइव्ड एट ऑशविट्स, द नाज़ी कंसंट्रेशन कैंप इन ऑक्यूपाइड पोलैंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। अ सॉलम रिमाइंडर ऑफ व्हाई ह्यूमैनिटी, कंपैशन एंड स्टैंडिंग अगेंस्ट हेट विल ऑलवेज मैटर। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन भी है, इट्स कॉल्ड वर्ल्ड बी डे, यानी कि BEE डे। सो प्लीज टुडे इफ यू सी बीज, बी रिस्पेक्टफुल। And फिलहाल फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल मिर्ची दे आर बैंगर्स का टाइम है, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

दिस इज योर गर्ल प्रिसिला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। यहाँ पर प्लेलिस्ट हॉट होती जा रही है भाई साहब, लेकिन अभी तापमान कितना हॉट या कूल है, लेट्स फाइंड आउट। राइट नाउ इट्स अराउंड 74 डिग्रीज फारेनहाइट एंड मोस्टली क्लियर आउटसाइड, लेकिन डोंट लेट दिस इनोसेंट मॉर्निंग फूल यू, क्योंकि बाय 3 PM आफ्टरनून पार्टली क्लाउडी स्काइज होने वाले हैं, हमारी लाइफ में अनवॉन्टेड वर्क मीटिंग्स की तरह घुस जाने वाले हैं। टुडेज टेम्परेचर्स आर स्विंगिंग बिटवीन 68 डिग्रीज फारेनहाइट टू अ स्पाइसी 92 डिग्रीज फारेनहाइट, लेकिन फील होने वाला है 93 डिग्री फारेनहाइट के आसपास। एंड इफ यू आर वंडरिंग कि आज के दिन घर से निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए, तो मैं बता दूं देयर इज अ हीट एडवाइजरी इन इफेक्ट टिल 8 PM ईस्टर्न टाइम। सो प्लीज कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, अपने आप को अच्छे से कवर करके बाहर निकलना, वाटर पियो, कोकोनट वाटर पियो, इवन फिल अप योर स्टैनली कप विद कोल्ड ड्रिंक्स। देखो पिछले 24 घंटों में तो कोई बरसात नहीं हुई थी, लेकिन ये 24 घंटे देखने वाले हैं 7 mm की बरसात। एंड इफ कम्पेयर टू येस्टरडे ऑलमोस्ट सेम टू सेम टेम्परेचर है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। येस्टरडे पीक्ड एट 96 डिग्रीज फारेनहाइट और आज जाने वाला है मैक्सिमम 92 डिग्रीज फारेनहाइट तक। सो वेदर यू आर हेडिंग टू वर्क, स्कूल ड्रॉप ऑफ, या फिर बस एसी के सामने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस एंजॉय कर रहे हो, मुझे अपने साथ में रखो। मेरा नाम है प्रिसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स पर तुम सुन रहे हो गर्मा गर्म मिर्चीदार बैंगर्स जो आने वाले हैं अब, और तुम जाने वाले हो मिर्ची प्रिस पर, दैट इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

हेलो हेलो, दिस इज योर गर्ल विद यू ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. मेरा नाम है प्रिसिला एंड अपेरेंटली इन द यूएस डॉग नानीज आर अर्निंग अराउंड $2,500 पर वीक. यस, पर वीक. मतलब कि द डॉग इज लिविंग अ मोर लग्जूरियस लाइफ देन मोस्ट ऑफ अस सर्वाइविंग ऑन आइस्ड कॉफी एंड इमोशनल डैमेज. According to reports, full-time dog nannies can make around $40 to $50 an hour. And live-in nannies, they are earning up to $800 per day. At this point, even Indian parents are confused. Yaar, Sharma ji ka beta doctor hai, lekin Verma ji ka beta Labrador ki nanny ban chuka hai. Aur wo zyada rich hai. And listen to this. In the UK, one family even advertised a live-in dog nanny role, paying around £100,000 a year. Yes, £100,000. Let that sink in. कहीं ना कहीं कोई देसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभी अपने पिलो में सर रखकर रो रहा होगा. But jokes apart, this actually shows how huge pet culture has become globally. For many people, pets are family, especially expats living away from home and family. Pets become roommates, therapists, emotional support system, and occasionally the only living being happy to see you after work. Also, imagine the interview process. So, where do you see yourself in 5 years? Hopefully, being promoted from belly rub intern to senior treat distribution manager. Ha ha. वैसे तुम अपने पेट पिक्चर्स मुझे भी भेज सकते हो. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS. और व्हाट्सएप कर सकते हो 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

मॉर्निंग माय बर्थडे बेबीज, मैं हूं प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रहे तो मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड इफ इट इज योर बर्थडे टुडे, हैप्पी बर्थडे टू यू यार, जादू की जप्पी तुम्हें और सारी खुशियां तुम्हारी लाइफ की पूरी हो जाए। एंड आज के दिन में योर कॉफी स्टे स्ट्रॉन्ग एंड योर बॉस स्टे ऑफलाइन एंड योर रिलेटिव्स डोंट बॉदर यू दैट मच। एंड गेस व्हाट, यू शेयर योर बर्थडे विद सम सीरियसली लेजेंडरी पीपल। फर्स्ट अप इज एनटी रामा राव जूनियर, एके जूनियर एनटीआर। एंड देन वी हैव एक नाम वाली सेलिब्रिटी, दी आइकॉनिक Share. And also born today is Busta Rhymes. And for the period drama lover, Josh O'Connor is also celebrating today. एंड आज जिनका बर्थडे है वो मेन कैरेक्टर एनर्जी के साथ साथ टैलेंटेड होते, ड्रामेटिक होते, स्टाइलिश होते हैं एंड प्रोबेबली हर जोक के बाद हा हा हा लिख कर टाइप करते रादर देन इमोजीज। सो इफ यू आर सेलिब्रेटिंग टुडे, पार्टी हार्ड, खाओ पियो ऐश करो, कैलोरीज काउंट मत करो, अपनी सेल्फीज खींचो, मुझे भी भेज सकते हो, मुझे अपने इन्वाइट्स भी भेज सकते हो, केक्स भी भेज सकते हो। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। अपने बर्थडे शाउट आउट भी यहीं पर भेजने हैं। और व्हाट्सएप पर अगर भेजना चाहते हो तो 9033 मिर्ची, दैट्स माय नंबर, दैट्स 9033647244। फिलहाल मिर्ची दार बैंगर्स बजाते तुम्हारे बर्थडे के उपलक्ष में। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: राइट, मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स, और आप सुनने वाले हो गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट।
1: जूल्स विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,500, $4,500 पर रहे हैं उसके साथ। आज सुबह गोल्ड के प्राइसेस कल से डाउनवर्ड ट्रेंड पर हैं, नीचे ट्रेड कर रहे हैं। गोल्ड में डेफिनेटली एक एंट्री पॉइंट बनता है। गोल्ड में जो इन्वेस्ट करना चाहें, इन्वेस्टर गोल्ड बार्स 1 ounce, 100 grams, किलो बार्स, PAM सर्टिफाइड गोल्ड और सिल्वर अवेलेबल एट राज ज्वेल्स। आइए गोल्ड में इन्वेस्ट करते हुए हिंदुस्तान से, जो अबाउट 15% सस्ता है अमेरिका में गोल्ड की प्राइस, गोल्ड बार्स में इन्वेस्ट करें राज ज्वेल्स के था। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल।
0: दैट वाज योर गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट विद मी प्रिसला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। अगर मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टा और एक्स पर फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट। रंग रेजा, रंग रेजा।

0: Mirchi, it's hot.
1: Good morning, guys. This is your girl Priscilla with you. Welcome back to Mirchi Mornings ka last hour, jahan par ab bari aa chuki hai.
2: Mirchi, hour ka three.
1: सबसे पहले ड्यूरिंग अ ब्रीफिंग इन नॉर्वे आइसलैंड प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टरून फ्रोस्टाडोटियर टोल्ड नरेंद्र मोदी दैट शी लव्स द वर्ड संबंध बिकॉज अपेरेंटली इट्स ऑल्सो अ प्योरली आइसलैंडिक वर्ड मीनिंग रिलेशंस और कनेक्शंस एंड हर मैसेज वॉज पीपल नीड मोर कनेक्शन टूडे एंड नंबर टू पर द इंटरनेट इज करंटली सर्वाइविंग प्योरली ऑन मीम्स बिकॉज पीएम मोदी गिफ्टेड पीएम जॉर्जिया मेलोनी अ पैक ऑफ मेलेडी टॉफीज यस मेलेडी एंड व्हेन शी कॉल्ड इट अ स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम इंडिया पीएम मोदी रिप्लाइड विद जस्ट वन वर्ड मेलेडी एंड दैट एक्सप्लोडेड द इंटरनेट विद मीम्स एंड जोक्स And finally, a nightmare fuel from Texas. A 255-foot roller coaster got stuck mid-air after a power outage, leaving riders walking down slowly from the top. Thankfully, everyone was reported safe. But imagine trying to act brave while internally reciting every prayer from childhood. And that's it for Mirchi Hour Ka 3 for this hour. Main hoon Priscilla, tumhare saath mein. Mujhe apne saath rakho Insta aur X par bhi. Mujhe follow kar lo. Mirchi Pris is my handle name. That is MIRCHIPRIS. WhatsApp पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची दैट्स 9033647244 स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट

0: गुड मॉर्निंग माय देसी पीपल, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स पर राशियों का फल जानने का टाइम।
1: मिर्ची राशि जोन
0: इट इज यानी मेष राशि। आज लाइफ फास्ट फॉरवर्ड मोड में जा रही है बॉस। यू आर अहेड ऑफ द गेम, सो डोंट वेस्ट एनर्जी प्रूविंग योरसेल्फ टू पीपल स्टिल टाइपिंग विद वन फिंगर। लकी कलर फॉर यू इज ब्लैक, लकी नंबर इज 17। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, नॉट एवरीवन इज इन योर कंट्रोल एंड ऑनेस्टली दैट्स गुड। आज थोड़ा सा जो होगा देखा जाएगा टाइप की एनर्जी रखो। योर पीस मैटर्स मोर देन एवरीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। लकी कलर फॉर यू इज

0: हेलो माय देसी पीपल, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में. दिस इज राशि जोन नंबर 2 ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स.
1: मिर्ची राशि जोन.
0: लिब्रा यानी कि तुला राशि, एडवेंचर इज कॉलिंग यू टुडे. ट्राई समथिंग न्यू, फूड, हॉबी, हेयर स्टाइल, मे बी इवन रिप्लाइंग टू ईमेल्स ऑन टाइम. द यूनिवर्स रिवॉर्ड्स ब्रेवरी. लकी कलर इज लैवेंडर. लकी नंबर इज 21. स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, डोंट ओवरथिंक समवन्स बिहेवियर टुडे. नॉट एवरी ऑकवर्ड कोवर्कर इज योर विलन ओरिजिन स्टोरी. सेव द इंटेंसिटी फॉर यूजफुल थिंग्स. लकी कलर इज डीप मरून. लकी नंबर इज 6. सैजिटेरियस यानी धनु राशि, ओ हो, समबडी इंटरेस्टिंग माइट सडनली कैच योर अटेंशन टुडे. कुड बी फ्रेंडशिप, कुड बी रोमांस, कुड बी जस्ट समवन हु फाइनली टेक्स्ट बैक प्रॉपरली. लकी कलर इज टर्कोइज. लकी नंबर इज 42. केप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, गेट ऑर्गेनाइज टुडे. योर लाइफ करंटली हैज 38 ओपन टैब्स मेंटली एंड इमोशनली. टाइनी डिटेल्स मैटर मोर देन यू रियलाइज. अडल्टिंग इज बेसिकली रिप्लाइंग टू ईमेल्स एंड फाइंडिंग चार्जर्स. लकी कलर इज स्लेट ग्रे. लकी नंबर इज 14. अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, योर ब्रेन इज ऑन फायर टुडे विद आइडियाज. राइट देम डाउन बिफोर दे डिसअपीयर फास्टर देन हॉट समोसास एट एन इंडियन पार्टी. One smart move today could genuinely change your future. Lucky color is neon purple. Lucky number is 27. Pisces yani mean rashi, loved ones may need extra patience today. Be gentle, be there and be present. And maybe call your parents before they say घर की याद नहीं आई तुझे जस्सी. लकी कलर इज सी फॉर्म ग्रीन. लकी नंबर इज 9. एंड दैट्स योर राशि जोन फॉर टुडे. मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट. आए, आए.

And just like that, my people, today's Military Mornings is coming to an end. This is your girl Priscilla signing off with one final piece of Military Dar update. So here's the update. A woman accused of stealing gold jewelry worth over 1.66 crore rupees from a showroom in Ahmedabad, Gujarat, was arrested in Delhi after allegedly going on the run with an accomplice. Police ka kehna hai, Harshida Shetty fled Gujarat with partner in crime Mayur Mali. But plot twist ho gaya unke saath. During their stay at a Delhi hotel, the guy reportedly disappeared with most of the stolen jewelry and left her behind. Matlab chor bhi ab ek dusre ko dhoka dene lage hai pyar mein. Waise to mission successful ho gaya, relationship unsuccessful reh gaya, aise bahut logo ki life mein hota hai. Lekin honestly, this sounds less like a crime update and more like a rejected Netflix ka thriller. Wo bhi गुजरात दिल्ली एडिशन कॉल्ड गोल्ड डिगर्स गेट इट. अगर तुमने वीडियो नहीं देखा तो देखना, उसकी चोरी का भी वीडियो बड़ा हाईलाइट हुआ था कुछ दिन पहले. एंड ऑन दैट नोट प्रिसिला सेज सारा बाय बाय टू यू. यू बी गुड, हैव अ ग्रेट डे अहेड. खाओ पियो ऐश करो और मिर्ची सुनते रहो. मुझसे कनेक्ट करना है तो इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: 90s की पूरी दुनिया आजकल ना हमारी जेब में है। कैसे? अरे वही तो अब आप सुनने वाले हो।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. अब ये देखो ना यार, एक हैंडीकैम, स्टीरियो, सीडी प्लेयर, टाइपराइटर, कैलकुलेटर, वॉकमैन और भी न जाने कितने ही ऐसे गैजेट्स अब हमारी जेब में रहते हैं जिसे हम फोन कहते हैं। धीरे धीरे ये इनसिक्योर मोबाइल फोन्स ने कब हमारी जिंदगी पर राज करना शुरू कर दिया, ये शिफ्ट तो हमें समझ में ही नहीं आया। बट यही फोन आजकल कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होने लगा है हमारी लाइफ में। रिसेंटली यू नो व्हाट, आई केम अक्रॉस अ स्टोरी व्हिच सेड कि एक टीनेजर ने अपना एक ऐसा अकाउंट बनाया है सोशल मीडिया पर जहां पर वो आईफोन लेने के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा है। ही इज कलेक्टिंग फंड्स सो दैट ही कैन बाय एन एक्सपेंसिव फोन, व्हिच इज अ रियलाइजेशन कि फोन मोर देन अमैल्गमेशन ऑफ ऑल दीज गैजेट्स जो कि इस्तेमाल की चीजें हैं, ये तो स्टेटस सिंबल सा बन गया है और हम इस स्टेटस सिंबल के गुलाम। हालांकि गैजेट्स को हम यूज करते हैं लेकिन यहाँ तो सोसाइटी के नाम पर गैजेट्स हमें यूज कर रहे हैं। मेरा यही सवाल है आपसे कि आपके लिए एक फोन एक स्टेटस सिंबल है या फिर एक गैजेट? डीएम करो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। एंड अभी के लिए मिडडे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हुई आपसे कहती हूँ स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: जो पहली मूवी मैंने थिएटर में देखी थी वो मेरे मतलब की मूवी थी नहीं यार, तड़ी पार था उस मूवी का नाम, मिथुन और पूजा भट्ट की। मुझे कोई मजा नहीं आया पिक्चर में, मैं सो भी गई। लेकिन फिर मैंने ना इस वाली बात को अपने दिमाग से निकाल दिया। मेरे हिसाब से जो पहली मूवी मैंने थिएटर में देखकर एंजॉय करी थी, दैट वाज जुरासिक पार्क।
0: मिर्ची वीसीआर।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और मुझे आज भी याद है वो दिन जब हमारी मामी हम सब बच्चों को ट्रीट पर लेकर गई थी और वो हमें प्लाजा में मूवी देखने के लिए लेकर गई थी। बहुत बड़ा थिएटर हुआ करता था वो, अलग बात है कि आज के दौर पे उसकी ऐसी की तैसी हो रखी है। लेकिन आज मैं आपको जुरासिक पार्क के पर्दे वाली बात नहीं बताने वाली, बिहाइंड द पर्दा यानी बिहाइंड द सीन्स वाली बात वीसीआर पे चलेगी। वेल, वो जो जुरासिक पार्क में ये डायनासोर्स की जो आवाजें हुआ करती थी, ये आपको पता है कैसे बनाई गई थी यार? उस टाइम पर ऐसा थोड़ी था कि YouTube खोला, SFX निकाला और चिपका दिया। क्रिएट की गई थी ये आवाजें, लेकिन इतनी भयानक आवाजें किसने निकाली होंगी? वेल, डेफिनेटली किसी इंसान ने नहीं निकाली थी। इस फिल्म में वो जो टायरेनोसॉरस था उसकी आवाज निकालने के लिए मिक्सचर बनाया गया था आवाजों पर। किस किस की आवाज थी? डॉग की, पेंगुइन की, शेर की, एलिगेटर की, एंड ऑफकोर्स देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट। तो आपको बेबी एलिफेंट सुनते के साथ आई एम श्योर एक ख्याल आया होगा कि जब डायनासोर इस फिल्म के अंदर चिल्लाता है तो एलिफेंट की आवाज भी आती है। वेल, वो इसी वजह से आती है क्योंकि उसमें एलिफेंट की आवाज ही थी। इनफैक्ट अ मिक्सचर ऑफ ऑल दीज आवाजें, लेकिन सबसे ज्यादा डोमिनेंट वाज एलिफेंट की आवाज। जुरासिक पार्क के बारे में और भी इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगी आपको थोड़ी देर में। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: आपको पता है जब जुरासिक पार्क शूट हो रही थी तो उन डायनासोर्स के बीच एक बहुत ही अजीब सी घटना घटी थी।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल हुआ ये था कि जो टीरेक्स बनाया गया था, ऑफ कोर्स दैट वाज अ डमी टीरेक्स एंड नॉट ऑफ कोर्स द रियल टीरेक्स। तो जो टीरेक्स था वो बेचारा था तो एक मशीन, एंड होता ये था कि ओकेजनली वो मैल फंक्शन कर जाया करता था। लेकिन जब पहली बार ये टीरेक्स मैल फंक्शन हुआ तब सारी टीम और क्रू जो थी मूवी की वो खाना खा रही थी और एकदम से टीरेक्स के चीखने की आवाज आई, जिसकी वजह से हाल ये हुआ कि लोग चिल्लाते हुए भागे और लोगों को लगा कि कुछ हो गया है, ये टीरेक्स जो है ये जिंदा हो गया है, और बहुत ही अफरा तफरी मच गई थी। लेटर ऑन लोगों को ये रियलाइज हुआ कि ये एक मैल फंक्शनिंग है एंड दैट वॉज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द रेन्स। वो टीरेक्स भीगता था, उसकी वजह से उसके अंदर मैल फंक्शनिंग हो गई, क्योंकि था तो वो एक मशीन ही। लेकिन तब भी हाल ये था कि कभी कभी जब टीरेक्स अपने आप बैठे बैठे आवाज निकालने लग जाता था ना बिना चालू किए, तो लोगों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाया करती थी। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: क्योंकि हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, ये हमें एक सर्टेन टाइम पर पता तो था, लेकिन इसका एहसास इस मोबाइल नेटवर्क के एड ने करवाया था बॉस।
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और देखो यार, दोस्त तो कई होते हैं, लेकिन हर दोस्त की अपनी एक खासियत होती है और हर दोस्त की हमारी दोस्ती में अपनी ही पहचान होती है। इस एड ने ना इस बात को बड़ी खूबसूरती से बताया था। और पता है, आज जब मैंने इस एड को सुना ना, तो मुझे मेरे एक सवाल का शायद जवाब मिल गया है। हमने बचपन से सुना है अबाउट द टर्म बेस्ट फ्रेंड, एंड देयर केम अ टाइम जब मैं इसे क्वेश्चन करने लगी थी कि व्हाई डू वी से बेस्ट फ्रेंड। क्या इसका मतलब ये हुआ कि बाकी सारे हमारे जो दोस्त हैं दे आर नॉट ग्रेट बिकॉज वो हमारे बेस्ट फ्रेंड नहीं है। एंड यू नो, मेरी डिक्शनरी में आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट आई डिड नॉट कैरी द वर्ड बेस्ट फ्रेंड, बिकॉज दोस्त तो मेरा वो भी अच्छा है ना जो मुझे रैंडमली एक कॉफी शॉप पर मिला और हमने गप्पे मारनी शुरू कर दी और आज एक दूसरे के फैमिली फंक्शंस का हिस्सा होते हैं। दोस्त तो मेरी वो भी बहुत अच्छी थी जो मेरे ट्यूशन पर आती थी और हम ट्यूशन के बाद अक्सर चाट खाने जाते थे, गप्पे मारा करते थे, गॉसिप किया करते थे, लेकिन बियॉन्ड ट्यूशन एंड चाट डेट्स हमारा कभी मिलना ही नहीं होता था। वही तो खूबसूरत बात है इस एड में, जो कि कही गई है कि हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। और इसी एड ने ना मुझे मेरे सालों से अटके हुए सवाल का जवाब भी दे दिया कि आई एम फाइन इफ आई डोंट वांट टू बिलीव इन द कल्चर ऑफ वन बेस्ट फ्रेंड एंड रादर हैव सेवरल गुड फ्रेंड्स। क्या बोलते हो? स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा, जो यहाँ के अलावा आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: इंतजार में। अलका याग्निक, सुनिधि चौहान, उदित नारायण एंड सुदेश भोसले की आवाज में दिस गाना फ्रॉम द फिल्म कभी खुशी कभी गम। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम पता है मैं क्या सोचा करती थी कि सुदेश भोसले जो है ये आशा भोसले के रिलेटिव है। बड़ी हुई तो पता लगा कि सिर्फ उनका सरनेम भोसले, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आशा भोसले के रिलेटिव हो गए यार। उनका दूर दूर तक आशा भोसले जी से कोई लेना देना नहीं है। वही वाली बात है ना कि बचपन में सैफ, आमिर, सलमान, शाहरुख इनको भी मैं भाई समझती थी क्योंकि सारे के सारे खान है ना। भूला बचपन यार, कैसे से थे हम नहीं।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, Only on Mirchi. It's hot.
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, बड़े होते होते काफी स्मार्ट हो गए, तभी तो मान ना मान करो गानों की पहचान में गानों की पहचान कर जाते हैं। तो जी, आज के वो दो गाने जो कि मैं आपके लिए मिक्स करके चलाने वाली हूँ और आपको पहचानना होगा कि ये दो गानों की धुनें कौन सी हैं फ्रॉम 90s या अर्ली 2000, वो है कुछ यू।

बस सब आपको इतना करना है कि डीएम कर देना ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: हेरा फेरी फिल्म बड़ी दमदार और मजेदार थी यार, लेकिन इसका एक गाना है उसके अंदर भी हेरा फेरी हुई है।
2: मिर्ची थग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अक्षय कुमार के ऊपर फिल्माया गया एक गाना था, वो कौन सा है? ये वाला। अच्छा गाना था यार, इसका म्यूजिक काफी डिफरेंट था। नहीं, वेल डिफरेंट इसलिए भी था क्योंकि ये म्यूजिक कहीं से उठाया गया था। वेल बेसिकली इस गाने की म्यूजिक इज एक्चुअली कॉपीड फ्रॉम रिटर्न ऑफ द मैक करके एक म्यूजिक वीडियो है, और इस म्यूजिक वीडियो के सिंगर हैं मार्क मॉरिसन, विच इज एन इंग्लिश सॉन्ग विच गोज दिस वे। And no points for guessing कि ये गाना किसका कंपोज किया गया। Of course, अन्नू जी। You tune in with me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा on Mirchi, it's hot.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: प्यारे पॉपिंस,
2: यादों को चिट्ठी।
1: तुम्हें देखे जमाना हो गया, लेकिन यादें आज भी ताजा है। बचपन की जेबों में खनकती तुम्हारी गोलियों की आवाज आज भी कानों में गूंजती है। तुम सिर्फ एक टॉफी नहीं थी यार, तुम तो हमारे बचपन की रेनबो थी, और हर रंग में अलग टेस्ट हुआ करता था, हर गोली में अलग कहानी हुआ करती थी। और ये गोलियों के रंग जो थे ना, अगर हम टिपी टिपी टॉप खेल रहे होते थे और तुम जेब में पड़ी होती थी तो इंसान जीत जाए, इतने रंग थे तुम्हारे पास। स्कूल से लौटते वक्त 50 पैसे या 1 रुपए में तुम्हें खरीदना किसी खजाने को पाने जैसा लगता था। दोस्तों के साथ रंग चुनकर खाना और फिर बहस करना कि कौन सा रंग सबसे अच्छा है, और फिर ये पूछना कि जुबान पर तुम्हारा रंग चढ़ा कि नहीं चढ़ा। वो छोटे छोटे पल भी कितने बड़े लगते थे यार उस टाइम पर। तुम्हारे जैसे मीठे दोस्त अब कहाँ मिलते हैं? अब ना वो दुकानदार अंकल हैं जो मुस्कुराकर पॉपिंस की स्ट्रिप पकड़ाते थे, ना वो बेफिक्री है जो तुम्हें खाते वक्त महसूस होती थी। तुमने सिर्फ मिठास नहीं दी, तुमने रिश्तों को भी रंगीन बनाया। कभी कभी आज भी किसी दुकान में तुम्हारी एक झलक दिख जाती है ना, तो दिल मचल उठता है। तुम्हें देख कर लगता है जैसे वक्त कुछ पल के लिए रुक गया हो, और मैं फिर वही नन्ही सी बच्ची बन गई, इनक्विजिटिव, खुश और तुम्हारे टेस्ट में खोई हुई। थैंक यू पॉपिंस, हमारे बचपन को इतना रंगीन और मीठा बनाने के लिए। और तुम्हें सुनकर अच्छा लगेगा कि तुम्हारी मिठास जो बचपन में चखी थी, आजकल रेडियो मिर्ची पर घुल रही हूँ, तुम्हें याद करती तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा मिर्ची सारा के नाम से इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

आई लव यू ऑल। दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: जैसे इंसानों की पर्सनालिटी होती है, सबके अपने अपने कैरेक्टर्स होते हैं, उसी तरीके से आवाज में भी एक बात होती है। हर एक आवाज की अपनी ही एक पहचान होती है, एंड सेम इज विद अदनान समी की आवाज। उनकी आवाज बिल्कुल हटके है, जो कहीं पर भी सुनो तो पहचान में आ जाती है। एंड कैसेट के साइड बी का गाना इज सलाम ए इश्क से अदनान समी की आवाज भी।
0: मिर्ची 90's कैसेट।
1: दिल क्या करे, ओए होए, ये गाना इतना प्यारा गाना है ना कि आज भी जब कभी ऐसा होता है ना कि थोड़ा ग्लूमी फील हो रहा होता है, या फिर लो फील हो रहा होता है, दिन बड़ा मजेदार नहीं जा रहा होता है, ये गाना चला देती हूँ मैं। इस गाने की बीट्स ही इतनी बढ़िया है यार। लेकिन जब इस गाने की बीट से थोड़ा सा खिसक कर आप लिरिक्स की पटरी पर आओगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि सिर्फ बीट्स ही नहीं, इस गाने की लिरिक्स भी बहुत ही कमाल है। इस गाने में सिर्फ प्यार नहीं, प्यार के सिम्टम्स बता रखे हैं यार। जहां पर ये कहा गया है कि भाई सीली सीली तपती रातों में जलता हूं मैं बरसातों में, डूबा डूबा हर पल यादों में, दिल क्या करे, यही तो साइन है मोहब्बत के कि रातें भले ही सीली सीली हो लेकिन तपती रहती हैं। बारिश हो रही है लेकिन इंसान जलता रहता है, क्योंकि यार अकेले बारिश का मजा कहाँ जब तक वो साथ में ना हो। कहते हैं कि अपने में ही खोया रहता हूँ, कहना है कुछ कुछ कहता हूँ, और पेन अजब सा सहता हूँ, दिल क्या करे। और ये जो अगली दो लाइनें हैं ना, ये बिल्कुल सच हैं। हमें पता नहीं लगता कि कब किसी की आंखों में झांक कर उसकी बातों को सुनते हुए हम उसके प्यार में पड़ जाते हैं। वो अगला इंसान जो है ना, वो हमें पसंद आने लग जाता है। ये एक जादू सा ही होता है यार। और लोग कहते हैं कि किसी की पर्सनालिटी देखने के बाद ही सबको प्यार होता है, फलाना ढिमाका। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, पर्सनालिटी, लुक्स, कपड़े, फलाना ढिमाका, ये सब देखने से प्यार नहीं होता बॉस। जब आप किसी इंसान से प्यार करते हो और जब आप उस इंसान की आंखों में झांक कर देख लेते हो और आंखों को समझ लेते हो और आपको ये समझ में आ जाता है कि इस इंसान की आंखें मुझसे बातें करती हैं, तो आपको कुछ अजीब सा महसूस होने लग जाता है दिल में। नोटिस तो आपने भी किया होगा, याद आ रहा है उस इंसान का नाम? समझ जाओ, यहाँ से गाड़ी आगे बढ़ाने की बारी आ चुकी है। अभी के लिए जाते जाते यही गाना आपके लिए लगाती हुई जा रही हूँ और आपसे कहती हूँ हम है रही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी यहाँ के अलावा मैं आपको मिल ही जाती हूँ ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। एंजॉय द ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की पहली मुलाकात हुई थी 1971 की फिल्म गुड्डी के सेट पर। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। जया बच्चन तब जया भादुरी थी, फिल्म की लीड एक्ट्रेस थी और अमिताभ का इसमें एक छोटा सा कैमियो रोल था। लेकिन ये पहली बार नहीं था कि इन दोनों ने एक दूसरे को देखा था। अमिताभ जया को पहले एक मैगजीन में एक प्रिंट एड में देख चुके थे और थोड़ी बहुत ऐसे इंक्वायरी भी की थी कि ये लड़की कौन है। जबकि जया ने अमिताभ को नोटिस किया था जब वो पुणे में FTII में पढ़ रही थी और अमिताभ वहां पर किसी काम से आए थे, तो जया को तो लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। अच्छा, फिर इनकी पहली फिल्म एज लीड एक्टर्स थी 1972 की एक नजर। फिर जब जंजीर फिल्म में इतने लंबे इतनी भारी आवाज वाले इस नए एक्टर के साथ कोई हीरोइन काम करने को तैयार नहीं थी, तब जया बच्चन ने उनके साथ काम किया और वहीं से बात जो है देखिए पक्की हो गई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।
1: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।

राकेश रोशन साहब की एज डायरेक्टर जब पहली फिल्म रिलीज होने वाली थी तब उन्होंने एक मन्नत मांगी थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। तो ये फिल्म थी 1987 की खुद गर्ल्स और उनकी मन्नत ये थी कि अगर ये फिल्म हिट हो गई तो वो अपना सर मुंडवा लेंगे। जी नेचुरल हेयर लॉस को कवर करने का अच्छा तरीका। नहीं नहीं, उनका नेचुरल हेयर लॉस नहीं था, उन्होंने वाकई में ऐसी मन्नत मांगी थी। वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे और फिल्म हो गई सुपरहिट, लेकिन उसके बाद ये थोड़े से घबरा गए, कंफ्यूज हो गए कि ऐसे कैसे शेव कर लें। लेकिन जब इनकी अगली फिल्म शुरू होने वाली थी ना 1988 की खून भरी मांग, तब उनको एक रात पहले नींद नहीं आई कि यार मैंने एक मन्नत मांगी थी, एक प्रॉमिस किया था ऊपर वाले से, वो मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ। तो उन्होंने सुबह सुबह जो सबसे पहला काम कराया वो ये कि बाबर को बुलवा के और अपना सर मुंडवा लिया। उनका ये लुक सबको इतना पसंद आया, वो इतना पॉपुलर हुआ कि उन्होंने फिर वैसा ही लुक रख दिया। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
2: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

0: वो कौन सा पहला गाना था जो सरोज खान ने श्रीदेवी के लिए कोरियोग्राफ किया था? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक बार एक इंटरव्यू में सरोज खान ने शेयर किया था, सुनिए।
1: एक कैमरामैन है अकबर, एक दिन वो मेरे घर पे आए और बोले जाओ हिम्मत वाला पिक्चर देखो, क्या डांस है उसमें, क्या हीरोइन नाची है। मैं बोली सच्ची? बोले देखने लायक है, जा देख। और मैं जाके हिम्मत वाला पिक्चर देखी तो मैं बोली, मैंने कहा काश मुझे भी कोई ऐसी डांसर मिले तो मैं अपना डांस दिखाऊं। घर आए तो मेरे को फोन आया सुभाष जी का, बोले सरोज गाना तैयार है कर्मा के लिए, गाना तैयार है आके ले ले और प्रैक्टिस कर ले, कश्मीर में शूटिंग है। मैंने कहा सुभाष जी आपने बताया नहीं हीरोइन किसको लिया, तो बोले श्रीदेवी को। तो मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया तो मैं बोली श्रीदेवी मैं अब भी उसका गाना देख के आ रही, सुभाष जी वो नाचेगी मेरे साथ, क्यों नहीं नाचेगी।
0: तो ये शुरुआत कर्मा से हुई, उसके बाद फिर चालबाज, चांदनी, मिस्टर इंडिया, पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

1971 में एक फिल्म आई थी पराया धन, जिसका सब्जेक्ट, जिसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इसमें हीरो थे न्यू कमर राकेश रोशन। हालांकि इसमें हीरो का कोई खास रोल नहीं था, मेन रोल हीरोइन का था। हीरोइन थी हेमा मालिनी, वो भी उस टाइम पे रिलेटिवली नई थी। इसमें बलराज साहनी साहब भी थे, लेकिन ये फिल्म उतनी ज्यादा नहीं चली। क्यों? क्योंकि उस टाइम राजेश खन्ना का पागलपन सवार था लोगों पर। राजेश खन्ना आराधना फिल्म के बाद इतने हिट हो गए थे, ऐसे सेंसेशनल हो गए थे कि उनकी जो फिल्म आ रही थी, अच्छी बुरी गुड एवरेज, लोग देखे जा रहे थे, उन्हीं को हिट कराए जा रहे थे। उस चक्कर में ये जो और अच्छी फिल्में साइड साइड में आ रही थी ना, वो इतनी नहीं चल पा रही थी। ये फिल्म चली थी, बट जितना सक्सेस आई थिंक ये डिजर्व करती थी, उतना इसको उस टाइम पे नहीं मिला। इसके गाने बहुत पॉपुलर हुए थे, तो इसी फिल्म का एक गाना सुन लेते हैं, पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

बहनों भाइयों, 1985 का सुपरहिट गीत जो गीत माला पर पायदान नंबर एक पर था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट राम तेरी गंगा मैली फिल्म का गाना सुन साहिबा सुन। मिड 80s में दिस सॉन्ग वॉज एवरीवेयर। लेकिन आपको पता है इस गाने की ट्यून ओरिजिनली मिड 50s में कंपोज हुई थी। जी, शंकर जयकिशन ने ये ट्यून कंपोज की थी अजंता नाम की मूवी के गाने के लिए, जो फिल्म बाद में नहीं बनी थी। राज कपूर साहब की ही वो फिल्म थी, लेकिन ये ट्यून अनयूज्ड पड़ी हुई थी। तो रविंद्र जैन जब राम तेरी गंगा मैली का म्यूजिक कंपोज कर रहे थे, इस ट्यून को इस्तेमाल किया गया, थोड़ा बहुत बदलाव किया गया। हसरत जयपुरी साहब ने ये गाना लिखा, लता मंगेशकर ने गाया और ये सुपर डुपर हिट हो गया। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

Mirchi. It's hot. Purani Jeans. With Charu. Only on

0: और फिर क्या होगा?
1: पार्टियां, दावतें,

1987 की फिल्म ईमानदार का एक बहुत पॉपुलर गाना किशोर कुमार की आवाज में भी रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन फिल्म में जो वर्जन रखा गया था वो उनकी आवाज वाला नहीं था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये गाना था और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है। तेरा ही नाम लिखा रखा है या तेरा ही दर्द छुपा रखा है, आई थिंक दोनों था। एनीवे, सो किशोर कुमार की आवाज़ में भी ये गाना रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन फाइनल वर्जन सुरेश वाडकर की आवाज़ वाला रखा गया था। जिसका रीज़न ये सुनने में आता है कि ये इस फिल्म में गाना संजय दत्त पे पिक्चराइज था, एंड संजय दत्त उस टाइम काफ़ी नए थे और सुरेश वाडकर भी उस टाइम नए थे, तो उनकी आवाज़ संजय दत्त पे ज़्यादा सूट कर रही थी एज़ कम्पेयर टू किशोर कुमार, बिकॉज किशोर कुमार की आवाज़ तब तक काफ़ी मच्योर, काफ़ी पॉपुलर हो चुकी थी। सो टू गिव दैट नॉवल्टी फैक्टर, सुरेश वाडकर की आवाज़ वाला जो वर्जन है वो फिल्म में रखा गया। सुरेश वाडकर के साथ इसमें आशा भोसले की आवाज भी है, प्रकाश मेहरा ने ये गाना लिखा है, कंपोज बाय कल्याण जी आनंद जी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची के साथ।
2: मिर्ची इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

0: राजेश रोशन साहब का कंपोज किया हुआ गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और ये तो आप जानते हैं ना कि राजेश रोशन ऋतिक रोशन के चाचू हैं। और कुछ टाइम पहले इनकी फैमिली पे जब एक डॉक्यूमेंट्री आई थी रोशन्स करके, उसके लॉन्च पे ना ऋतिक रोशन ने राजेश रोशन साहब के कंपोज किए हुए गाने के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात शेयर की थी, सुनिए।
1: वो याराना फिल्म का संगीत रिकॉर्ड हो रहा था और चाचा मेरे पास आए और मुझे पूछा कि इस गाने में मैं ये रखूं कि ये रखूं। तो आज तक आई फील वेरी वेरी प्राउड कि याराना का जो मेरा फेवरेट सॉन्ग है तेरे जैसा यार, उस गाने में मेरा भी थोड़ा योगदान है। तो आई फील वेरी वेरी प्राउड, आई एम वेरी वेरी प्राउड कि मैं अपने चाचा का भतीजा हूँ। हो मेरी जिंदगी सवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के प्यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना।
0: आहा, बहुत अच्छा गाया, आगे से नहीं गाना। नहीं, अच्छा गाया, अच्छा गाया। तो यही गाना सुन लेते हैं, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं

रंजीत साहब की एज विलन शुरुआत हुई थी 1970 की फिल्म सावन भादो से। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन उनको इमेंस पॉपुलैरिटी मिली 1971 की फिल्म शर्मीली से, जिसमें उनका बहुत ही ढेंटड़न टाइप का नेगेटिव रोल था। लेकिन इस फिल्म के प्रीमियर पे ना बहुत ही फनी चीज हुई थी। रंजीत साहब की टिपिकल पंजाबी फैमिली, उनका पूरा टब्बर जो है वो फिल्म के प्रीमियर पे आया था। उनका इतना नेगेटिव रोल देख के ना वो इतने अपसेट हो गए कि बीच फिल्म में से उठ के चले गए। थोड़ी देर बाद जब रंजीत साहब वापस घर गए तो पूरा परिवार गुस्से में बैठा हुआ था उनकी क्लास लेने के लिए कि ये तू की करदा पे है, ये तेरा काम है। तो इस तरह से उनके विलन वाले करियर की शुरुआत हुई थी। कितनी क्यूट होती है फैमिलीज भाई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स विद चारू उंगलियों।

ओए होए, थोड़ा उदास गाना, लेकिन फिल्म का नाम बड़ा हैप्पी। आप आए बाहर आई, मिर्ची सुन रहे हैं आप। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। मुझे याद है इस फिल्म में ना राजेंद्र नाथ जो कॉमेडियन होते हैं उनका नाम विस्की होता है। कि पुरानी फिल्मों में विलन्स के नाम बड़े इंटरेस्टिंग होते थे। जैसे मैं ढूंढ रही थी तो राजेंद्र नाथ साहब का ही नाम फिल्मों में क्या क्या रहा है, पोपटलाल, दीफू, प्यारे, चिंटू, पांडू, झटपट सिंह, विलायती राम, गोपू चंद, मनमौजी। इसी बात पे मौज मस्ती वाला गाना सुन लेते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

जो करता है पाता है। अरे अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो खुश नहीं बोलेगा।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है?

0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।
1: It's hot.
0: Purani jeans with Charu only on

तो 1974 की रोटी फिल्म मनमोहन देसाई साहब की पहली फिल्म थी जो कादर खान साहब ने लिखी थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और कादर खान ने जो इस फिल्म के लिए डायलॉग्स लिखे ना, वो सुन के देसाई साहब इतने खुश हो गए उछल पड़े वो, मतलब यहाँ वहाँ कंट्रोल में नहीं आ रहे थे वो। खुशी में उन्होंने कादर खान साहब को एक टेलीविजन गिफ्ट किया, एक घड़ी गिफ्ट की। और जब उनसे पूछा कि आप ये डायलॉग्स लिखने का कितना पैसा लेते हैं, कादर खान साहब ने कहा 21,000 रुपए। तो देसाई साहब ने उनको कहा कि रबिश, आपको 1,21,000 मिलेगा। भाई ऐसे मालदार दिलदार लोग हम सबको जीवन में मिलते रहे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
2: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: 1984 की नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म उत्सव शशि कपूर साहब ने प्रोड्यूस की थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इसमें उन्होंने एक्ट भी किया था। इनफैक्ट जो रोल शशि कपूर साहब ने प्ले किया था ना, वो पहले अमिताभ बच्चन करने वाले थे, मतलब उनको अप्रोच किया गया था, लेकिन किस वजह से वो नहीं कर पाए, एक पुराने इंटरव्यू में सुनिए शशि कपूर साहब ने इस बारे में क्या कहा था।
1: अमिताभ जी काम करने वाले थे क्योंकि पहले उनका जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से उनके हर शेड्यूल, उनका हर प्रोग्राम 1-1.5 साल आगे गया, तो फिर मैं नहीं उनको ले सका। तो जो मैंने रोल किया है वो रोल एक्चुअली अमित जी करने वाले थे उत्सव में।
0: वेल, बच्चन साहब की सेहत अगर ठीक भी होती तो भी वो इस फिल्म में काम नहीं करते, क्योंकि सिलसिला फिल्म के बाद तो रेखा के साथ काम करने का सिलसिला खत्म हो गया था ना। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: 1970 का सुपर डुपर हिट गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो आन मिलो सजना का ये गाना जो है, इसको शूट करने में ना बहुत दिक्कत आ रही थी, बिकॉज सूरज ढलने का सनसेट का शॉट लेना था जो हो ही नहीं पा रहा था। फाइनली किसी तरह हुआ और सूरज ढलने पे ना मुझे राहत इंदौरी साहब की दो लाइन्स याद आ रही हैं। दिन ढल गया तो रात गुजारने की आस में सूरज नदी में डूब गया और हम ग्लास में। ये सबके अपने अपने ग्लास होते हैं। मेरे ग्लास में रात को पेपरमिंट टी, कैमोमाइल टी होती है, उससे कहते हैं स्ट्रेस एंजाइटी जो है वो कम हो जाता है, नींद आने में मदद मिलती है। ये नींद ना आने की बड़ी भयानक बीमारी सी लग गई है जीवन में।
1: ना नींद आती है, ना मोहब्बत आती है, ना कोई आता है, बस याद आती है।
0: पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: हमारी अभी दूसरी फिल्म आई नहीं, लेकिन इस फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म की अनाउंसमेंट जरूर आ चुकी है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हूँ आप, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया की मच लव्ड हॉरर फैंटेसी फ्रेंचाइजी तुम्बाड, जिसका पार्ट टू इस साल तो नहीं अगले साल दिसंबर तक आएगा, जिसके बारे में कुछ दिनों पहले रिवील किया गया दैट पार्ट टू में आलिया भट्ट का एक एक्सटेंडेड कैमियो होने वाला है। बट नाउ रिपोर्ट्स हैव इट कि ये एक्सटेंडेड कैमियो जो है वो कॉन्टेक्स्ट सेट करेगा ताकि तुम्बाड थ्री में आलिया भट्ट को फिल्म की लीड एक्ट्रेस का दर्जा मिल सके। भाई एक तो फिल्म के डायरेक्टर सोहम सा, जो इस फिल्म के लीड एक्टर भी हैं, उनके आर्ट का, उनके क्राफ्ट का कोई जवाब नहीं, और अब इसमें आलिया भट्ट का एडिशन। कसम से अगर आपने तुम्बाड नहीं देखी देन हॉरर जॉनरा की एक बहुत अल्टीमेट लेवल की फिल्म आप मिस कर रहे हैं, जरूर से देखिएगा। एंड आई एम श्योर उसके बाद आपको तुम्बाड टू और थ्री का बेसब्री से इंतजार होगा, जस्ट लाइक मी। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: अरे यू के बड़ा गोरी भाई, बजा।